0: ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। अब मजीद खबरें। जापान की अदालत उज़्मा ने यूनिफिकेशन चर्च के नाम से मशहूर मजहबी ग्रुप की एक खसूसी अपील को मुस्तरद कर दिया है, जिसमें ग्रुप की तहलील के एक मातहत अदालत के फैसले को कलदम करने की इस्तदा की गई थी। टोक्यो हाईकोर्ट ने इस साल मार्च में ग्रुप की मजहबी कॉरपोरेशन की हैसियत को ख़त्म करने का हुक्म दिया था। अदालत ने कहा था कि ग्रुप के इबादत गुजारों से बड़े अतियात मांगने और उनकी रूहानी सेहत के बारे में खौफ का फायदा उठाकर उन्हें महंगी अशिया खरीदने पर मजबूर करने के अमल से बहुत से लोगों को बहुत ज्यादा माली नुकसान और जहनी अजियत पहुंची। ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट में एक खसूसी अपील दायर की, जिसमें इस्तदलाल था कि हाईकोर्ट का फैसला मजहबी सरगर्मियों और तंजीम साजी के हक की आज़ादियों की खिलाफ वर्जी करता है और इसलिए आईन के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल तक अपील खारिज करने का फैसला कर लिया। फैसले ने हाई कोर्ट के हुक्म को हतमी करार दे दिया। 2022 में साबिक जापानी वजीर आजम आबे शिंजो की हलाकत के बाद इस ग्रुप के तौर तरीकों ने बड़े पैमाने पर तवज्जो हासिल की। जुर्म का एतराफ करने वाले शख्स ने बताया कि उसकी वालदा के इस ग्रुप में शामिल होने और भारी अतियात देने के बाद उसके खानदान के हालात खराब तर हो गए थे। उसने कहा कि आबे शिंजो को इसलिए निशाना बनाया कि उसने देखा था कि साबिक वजीर आजम इस ग्रुप को सियासत से जोड़ने वाली मरकजी शख्सियत थे। ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक बयान जारी किया, जिसमें उसकी खसूसी अपील खारिज किए जाने को इंतहाई अफसोसनाक करार दिया गया। बयान में यह भी कहा गया कि उसके इबादत गुजारों और उनके अहले खाना के हकूक की मुस्तकबिल में खिलाफ वर्जी नहीं की जाएगी। शुमाली जापान के ओमोरी प्रीफेक्चर में प्राइमरी के तुलबा ने एक फ्लोट के लिए पेंटिंग्स तैयार की हैं। यह फ्लोट गर्मियों के एक मशहूर फेस्टिवल में हिरोसाकी शहर से गुजरेगा। हर साल शहर के जितोकू प्राइमरी स्कूल के बच्चे अगस्त में होने वाले सालाना हिरोसाकी नेपुता फेस्टिवल के लिए फ्लोट बनाते हैं। इस रवायत का मकसद मकामी कम्युनिटी के लिए उनके प्यार और दिलचस्पी को गहरा करना है। इस काम का आगाज पीर के रोज हुआ। चौथी से छठी जमात के बच्चे मंगल को स्कूल के जिम्नेजियम में पेंटिंग्स को खत्मी शक्ल देने के लिए जमा हुए। इन पेंटिंग्स से फ्लोट के अगले और पिछले हिस्सों को सजाया जाएगा। बच्चों ने एक मकामी फ्लोट पेंटर की हदायत पर अमल करते हुए पेंटिंग्स को स्याही से बनाया और एहतियात से नीले, नारंगी और दीगर रंगों को इसमें शामिल किया। बच्चे जुलाई के अवाखिर तक फ्लोट के ढांचे के साथ इन पेंटिंग्स को लगाकर इसे मुकम्मल करेंगे। फ्लोट की नकाब कशाई 1 अगस्त से शुरू होने वाले फेस्टिवल में की जाएगी।
1: और अब आखिर में आज की अहम खबरों पर एक नज़र। जौहरी मुआयनों के हवाले से अमरीका और ईरान में इख्तलाफात बरकरार हैं। वाशिंगटन का कहना है कि तेहरान ने जौहरी मुआयनाकारों को कबूल करने पर इत्तेफाक किया है। ताहम ईरानी हुकाम का इसरार है कि ऐसा कोई मंसूबा वजूद नहीं रखता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस बात पर कायम हैं कि ईरानी कुली और मुकम्मल तौर पर मुत्तफिक हो चुके हैं। और बैन अलाक्वामी मेरी टाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO का कहना है कि वो अपनाए हुरमुज के खित्ते में अब तक फंसे हुए 11,000 से जायद जहाजरानों के इनखिला के मंसूबे पर अमल दरामद शुरू कर रही है। इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें ख़त्म हुईं। मज़ीद खबरों, तबसरों, तज्जियों और दिलचस्प वीडियोज़ के लिए आप जब चाहें हमारा पेज विज़िट कर सकते हैं। एड्रेस है

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 24 जून बुधवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला खवानो से सुने समाचार। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु निरीक्षण को लेकर मतभेद बना हुआ है। अमेरिका का कहना है कि ईरान अपने यहाँ परमाणु निरीक्षक स्वीकारने को राजी हो गया है, लेकिन ईरानी अधिकारियों का कहना है कि ऐसी कोई योजना है ही नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब भी कह रहे हैं कि ईरान पूरी तरह से मान गया है। ट्रंप ने मंगलवार को पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा, वे जानते हैं कि वे लोग गलत हैं। उन्होंने हमें अंदर बताया था, हम राजी हो गए थे, निरीक्षण पर 100% सहमति बन गई थी, और अगर वे सही होते तो मैं अभी बैठकें रद्द कर देता। ट्रंप ने यह भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के निरीक्षक सही समय पर ईरान पहुंच जाएंगे। इस बीच ईरानी नेता मध्यस्थ देशों के साथ लगातार राजनयिक प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि ईरान अपनी रक्षा क्षमता को लेकर किसी भी देश के साथ कभी कोई समझौता नहीं करेगा। पेजेश्कियान ने कहा, हमारी मिसाइलों का मुद्दा हमारे बीच हुए समझौता ज्ञापन में शामिल नहीं है और ना ही कभी होगा। शहबाज शरीफ ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल रखने के अधिकार का समर्थन किया। वहीं ईरान और ओमान के शीर्ष अधिकारियों ने होर्मुज जलडमरू मध्य के भावी प्रबंधन पर चर्चा की है। उन्होंने एक वक्तव्य जारी कर संयुक्त कार्यबल के माध्यम से निरंतर संवाद पर सहमति व्यक्त की है। उनका कहना है कि किसी भी समझौते में दोनों देशों की संप्रभुता और अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO का कहना है कि वो होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे 11,000 से अधिक नाविकों को सुरक्षित बाहर निकालना शुरू करेगा। IMO के महासचिव आर्सेनियो डोमिंगुएज ने मंगलवार को एक बयान जारी कर इस कदम की घोषणा की। बयान के अनुसार ये विशाल अभियान ईरान, ओमान, क्षेत्र के अन्य तटीय देशों, अमेरिका और समुद्री उद्योग के साथ निकट सहयोग से चलाया जाएगा। इसमें यह भी कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र की यह विशेष एजेंसी नाविकों की सुरक्षा और वैश्विक व्यापार की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। बयान में ये स्पष्ट नहीं किया गया कि योजना कब शुरू की जाएगी। मंगलवार को ही ओमान के समुद्री अधिकारियों ने एक बयान में कहा कि वे IMO के साथ समन्वय करते हुए नाविकों को सुरक्षित निकालने के लिए एक अस्थायी समुद्री गलियारा उपलब्ध कराएंगे। बयान में कहा गया है कि अमेरिका और ईरान के बीच हुई वार्ता के परिणामों के अनुरूप ओमान बिना कोई शुल्क लिए जलडमरू मध्य में नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करेगा। जापान सरकार के शीर्ष प्रवक्ता किहारा मिनोरू का कहना है कि चीन के सीमा शुल्क अधिकारियों ने मई में पूर्वोत्तरी चीन के लियाओनिन प्रांत स्थित दालियन शहर में दो जापानी नागरिकों को हिरासत में लिया था। बुधवार को पत्रकारों से बात करते हुए मुख्य कैबिनेट सचिव किहारा ने कहा कि उन्हें सूचित किया गया है कि दोनों जापानी नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या नहीं है। किहारा ने कहा कि सीमा शुल्क अधिकारियों ने चीन स्थित जापानी वाणिज्यिक दूतावास को सूचित किया कि प्रतिबंधित वस्तुओं की तस्करी के संदेह में 18 और 25 मई को दो जापानी नागरिकों को हिरासत में लिया गया था। किहारा ने निजता संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए इससे अधिक जानकारी नहीं दी। किहारा ने यह भी कहा कि जापानी नागरिकों की रक्षा के लिए सरकार उचित कदम उठाएगी, साथ ही उनसे और अन्य संबंधित पक्षों से संपर्क करेगी।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: जापान में यूनिफिकेशन चर्च नामक धार्मिक समूह ने सर्वोच्च न्यायालय में एक विशेष अपील दायर कर निचली अदालत के उस फैसले को पलटने की मांग की थी जिसमें उसे भंग करने का आदेश दिया गया था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने समूह की अपील को खारिज कर दिया है। टोक्यो उच्च न्यायालय ने इस वर्ष मार्च में समूह को एक धार्मिक निगम के रूप में भंग करने का आदेश दिया था। अदालत ने कहा था कि समूह ने बड़ी दान राशि मांगने और आध्यात्मिक भलाई को लेकर श्रद्धालुओं की चिंताओं का फायदा उठाकर उन्हें महंगी वस्तुएं खरीदने के लिए मजबूर किया, जिसके कारण कई लोगों को भारी वित्तीय नुकसान हुआ और मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ी। धार्मिक समूह ने सर्वोच्च न्यायालय में एक विशेष अपील दायर करते हुए तर्क दिया कि उच्च न्यायालय का निर्णय धार्मिक गतिविधि और संगठन की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है और इसलिए संविधान का उल्लंघन है। सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को अपील खारिज करने का फैसला किया। इस फैसले से उच्च न्यायालय का आदेश अंतिम हो गया है। 2022 में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री आबे शिंजो की हत्या होने के बाद इस समूह की गतिविधियों ने सबका ध्यान आकर्षित किया था। हत्या का अपराध स्वीकार करने वाले व्यक्ति ने कहा कि उसकी मां के समूह में शामिल होने और बड़ी दान राशि देने लगने के बाद से उसके परिवार के हालात बदतर हो गए थे। उसने आबे को निशाना बनाने का कारण ये बताया कि वो आबे को समूह को राजनीति से जोड़ने वाले मुख्य व्यक्ति के रूप में देखता था। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद समूह ने एक बयान जारी कर अपनी विशेष अपील के खारिज होने को बेहद खेदजनक बताया। बयान में ये भी अनुरोध किया गया कि भविष्य में उसके अनुयायियों और उनके परिवारों के अधिकारों का उल्लंघन न किया जाए। उत्तरी जापान के आओमोरी प्रीफेक्चर के प्राथमिक विद्यालय के छात्रों ने एक झांकी के लिए चित्र तैयार किए हैं। ये झांकी एक प्रसिद्ध ग्रीष्मोत्सव के तहत हिरोसाकी शहर से होकर गुजरेगी। हिरोसाकी शहर स्थित जितोकु प्राथमिक विद्यालय के बच्चे अगस्त में होने वाले वार्षिक हिरोसाकी नेपुता उत्सव के लिए हर साल एक झांकी बनाते हैं। इस परंपरा का उद्देश्य बच्चों में स्थानीय समुदाय के प्रति रुचि और स्नेह पढ़ाना है। झांकी बनाने का काम सोमवार को शुरू हुआ। चौथी से छठी कक्षा के छात्रों ने मंगलवार को विद्यालय की व्यायामशाला में एकत्र होकर झांकी के अगले और पिछले हिस्से को सजाने वाले चित्र तैयार किए। बच्चों ने स्थानीय झांकी चित्रकार के निर्देशों पर चित्रों में काली स्याही और नीले, नारंगी तथा अन्य रंग भरे। बच्चों को जुलाई अंत तक झांकी के ढांचे पर तस्वीरें चिपकाकर उसे पूरा करना है। ये झांकी 1 अगस्त से शुरू होने वाले उत्सव में दिखाई जाएगी।
2: और अब अंत में आज के मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु निरीक्षण को लेकर मतभेद बना हुआ है। अमेरिका का कहना है कि ईरान अपने यहां परमाणु निरीक्षक स्वीकारने को राजी हो गया है, लेकिन ईरानी अधिकारियों का कहना है कि ऐसी कोई योजना है ही नहीं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ का कहना है कि वो होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे 11,000 से अधिक नाविकों को सुरक्षित बाहर निकालना शुरू करेगा।
0: इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।